निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह हे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सते असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भाव वैसाई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फेराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखन बोलन बान अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखै तिसर नाहे जे फुरमाए तिव ते पाहे जेता कीता तेता नाव विन नावै नाही को थाव कुदरत क

तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल नाव। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विन गुण कीते भगत ना होय। सो अस्ते आथ बाणी बरमाव, सत सोहान सदा मनचाव। कवन सो वेला वखत कवन, कवन थित कवन वार। कवन से रुते माहो कवन, जित होवा आकार। वेल न पाइया पंडती, जे होवै लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया, जे लिखन लेख कुरान। थित वार न जोगी जाने, रुत माहो न कोई। जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। किव करे अख किव सा लाही, क्यों वरनी किव जान। नानक आखन सब को आखै, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै। नानक जे को आपो जाणै, अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास। ओढ़ के ओढ़ कपाल थके, वेद कह निक वात। सह से अठारह कैन कतेबा, असलो इक धात। लेखा होए ता लिखी है, लेखा होए विनाश। नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप। सालाही सालाहे एते सुरत न पाईया। नदिया अते वाह पवै समुंद न जानिया। समुंद साहा सुल्तान, गिरहा सेती माल धन। कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनो न वीसरह। अंत न सिपती कैन न अंत, अंत न करन देन न अंत। अंत न वेखन सुन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। अंत कारण केते बिललाहे, ताके अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोय, बहुता कहिए बहुता होय। वड्डा साहिब ऊचा था, ऊचे उपरी ऊचा नाव। एवडे ऊचा होवै कोय, तेसे ऊचे को जाने सोय। जे वडे आप जाने आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया न जाए। वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगह जो दे अपार। केते गणत नहीं विचार, केते खप तुटे बेकार। केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे। केते आ दुख भूख सद मार, एह पे दात तेरी दातार। बंद खलासी भाणे होए, होरे आख न सकै कोय। जे को खाए के आखन पाए, ओह जाने जेती आ मोह खाए। आपे जाने आपे दे, आखे से पे कई के। जिसनु बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाहो। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारी है मुल भंडार। अमुल आवह मुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला सुमाहे। अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तोल मुल प्रवान। अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म मुल फुरमान। अमुलो मुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे वखियान। आखे ब्रह्म आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद। आखे ईसरे आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध। आखे दानव आखे देव, आखे सुर नर मुनजन सेव। केते आखे हे आखन पाहे, केते कह कहे उठ उठ जाहे। एते कीते होर करह, ताँ आख न सकह केई के। जेवड भावै तेवड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल भी गाड़, ताँ लिखी है सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब समालै। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे। केते राग परि स्यो कहियन, केते गावन हारे। गावह तुहनो पौन पानी बैसंतर।
गावै राजा धर्म दुआरे, गावह चित गुप्त लिख जाण, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सुवारे, गावह इंद दासन बैठे देवत्यां दरनाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहन या मन मोहन सुरगा मश प्याले, गावन रतने उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, सेई तुदनो गावे हे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, हैपी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई, रंगे रंगे भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जीव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसे हुक्म न करना जाई, सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान के करै बैभूत, खिंथा काल कुवारी काया।

चलावे, लेखे आवे भाग, आदेश तिसे आदेश, आदि अनीला नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारे, एक लाए दीबान, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखे ओना नदर न आवै, बहुता एहो वेडान, आदेश तिसे आदेश, आदि अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोए लोए भंडार, जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आदि अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दो जी पौ लख हो है, लख हो वह लख वीस, लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीस, ए तराहे पत पवड़िया, चढ़िया होया कीस, सुन गल्ला आकाश के कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस, आखन जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगन देन न जोर, जोर न जीवन मरन नह जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोय, राते रुते थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखे धर्मसाल, तिस विच जी युगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमे करमे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच प्रवान, नदरे कर्म पवै निशान, काच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे काड़त घड़ी यह, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दान मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत नयंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथ नाद बिनोद कोड आनंद, सरम खंड की बाणी रूप, तिथ काड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे, जे को कह पिछै पछताए, तिथ घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथ घड़िया सुरा सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथ होर न कोई होर, तिथ जोद महाबल सूर, तिन मैं राम रहिया भरपूर, तिथ सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओह मरे न ठागे जाहे, जिनका राम वसे मन माहे, तिथ भगत वसे के लोग करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथ खंड मंडल वर भंड, जे को कथे तयंत नयंत, तिथ लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिव कार, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, भौ खला अगन तपताव, भांडा भाओ अमृत तित ढाल, घड़िया शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल, सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया, वाचै

शरण परे की रखो शर्मा, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा, श्री स्केत जगत के ईसा, फोपन भ्रष्ट।

कभियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन।

तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, जो सदा

काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो।

चिटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन की सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट की पट पट की जाने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कम हूँ तुम मैं मिलत देहि तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार।

दुष्टजिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करूरण काता जे अस्तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित होवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जग पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुनै गुंग जो याहे, सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता पावई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार, चौपई को कहै, चौपई संबत सत्रह है, सहस पणिजै, अर्ध सहस पुन तीन कहिजै, भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर्थ तद्रव।

सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहयो सब।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सीती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्दोता गावहो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना

रंग गुरपुरु साधु यनंद पावै जिस सिमृत मन हुए प्रगासाओ ताकि अतिमित कहन न जावै रहाओ। वर्त नेम

चित्र गुप्त सब लिखते लिखाओ, भक्त जना को दृष्ट न पेखाओ। कहो नानक जी से सतगुरु पूरा, बाजीता कैन हर तूरा। आसा महला पंजवा रूपदा, साधु संग सिखायो नाम, सर्व मनोरथ पूर्ण काम। बुझगी दृष्णा हर जस अघाने, जप जप जीवा सारंग पाने। कर्णक रावण सरण परया, गुरु पुरुषाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ।

सतगुर को जाओ। गुरुपुरा पायो मेरे भाई, रोग शोक सब दुख मनासे, सतगुरु की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय बसाए, रोग शोक सब दू मन चिंतित।

तुझ बिनु यवन कोई नदर निहारिया रहाओ। प्रतपाली प्रजाप कट कट सारी है, जिस मन मुठाए आप ते मन हो ना बिसारी है। जो कुछ करे सो आप आपन फाणे आओ, भगतां का सहाई जुग जुग जाने आओ।

0: सिमरन कर बनावस है।
1: प्रभु के
0: सिमरन काल पर हरे। प्रभु सिमरत कछ बिगन न लागे। प्रभु के सिमरन भौ न व्यापे। प्रभु का सिमरन साध के संग। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। प्रभु के सिमरन जप ता पूजा। प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी। प्रभु के सिमरन हो सुफला। से सिमरे जिनाब सिमराए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे। प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए। प्रभु जी बसे साध की रसना। प्रभु को सिमरन से तनवंते। प्रभु को सिमरन से जन परवान। प्रभु को सिमरन से बेहमोता जे। प्रभु को सिमरन से सुखवासी। सिमरन ते लागे जिनाब दयाला। प्रभु को सिमरन से पर उपकारी। प्रभु को सिमरन से मुख सुहावे। प्रभु को सिमरन तन आत्म जीता। प्रभु को सिमरन तन आनंद कनेरे। संत की कृपा दे अन दिन जाग। प्रभु के सिमरन कार्य पूरे। प्रभु के सिमरन हर गुण बाणी। प्रभु के सिमरन नह चलासन। प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार। सिमरे से जिन जन को प्रमया। हर सिमरन का भगत प्रगटाए। हर सिमरन पै सिर जति दाते। हर सिमरन तारी सब धरना।
1: सिमर हर का

सुन समाध नाम रसमाते, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, नानक जल संकेते तरै, काम देन हर हर गुण गाम, नाम सुरत दर्द दुखलता, संत प्रताप दूत सब नसै, संत का

0: सगल त्याग मन मध्य फिरिया
1: अनेक प्रकार की ये भोजन
0: कौन दानो मैं भरत
1: नाम
0: नेम करे वो पाती
1: नहीं तू राम नाम विचार
0: नानक गुरमुख नाम जपी एक बार गुरमुख नाम जपत गत पाए
1: मन कामना तीरथ दे छूटे
0: मते हुटे
1: सोच करे दिनस अर रात
0: तंते जात
1: इस देही को बहुत साथ न करे
0: मानते कबू न भिख्या डरे
1: जल तो वह बहुत दे अनित
0: शोध गाओ एकाची पीत
1: मन हर के नाम की महिमा ऊंच
0: नानक नाम उतरे पतत भाव मूच
1: बहुत स्यानक जम का पौ व्याप
0: अनेक जतन का तृष्णा द्रापे
1: एक अनेक अगर नहीं बूझे
0: कोट पाप दरगे नहीं सिजे मोहे व्यापे माया जाल
1: करतूत सगली जमदान
0: गोविंद भजन बिन तिन्ह माने
1: का नाम जपत दुख जाए
0: नानक।

मासु पावे हर राज कैद मन सानी पर ठाकुर प्रभु ठाके मन सास सास सिमरो प्रभु जे नानक सागी भगत करे मन दी सिमरत के आलस की जय मन दी प्रभु को कबु न बिसारी राग प्रभु अपने मना उठ बैठ सत से त्याई

में कमल लेप, जैसे सुसर को सुख, जैसे राजा को लागे तुल्पवान, जो पसता को खोते को चंदन लेप, नानक जो पाव का सहस पाओ, जैसे मैं लागे जला, जैसे दारू पर आकाश, ब्रह्मज्ञानी के नाम के मान, मन अपने हैं सब दे नीचा, नानक जिन प्रभाव करे आदम दशरा।

वैष्णव सो जिस ऊपर सो प्रसन्न कर्म करत हो वह नहीं कर्म काम फल की इच्छा नहीं पाछे मंदन अंतर सिमन गोपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावे भगवती भगवंत भगत का रंग मानते विनसे सगला परम साध संग पापा मल खोवे भगवान की टहल करे नित नीत हर के चरण हृदय बसावे सो पंडित जो

न पाइए धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास आत्म राम जिसने त्रिय आया सदा निकट निकट हर जान अपने दास को आप कृपा करें।

कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पर परमे उदासी, कई कोट तभी सर होते, कई कोट का पाप विचार है, नान करते कांत न पावे, कई कोट अंधर ज्ञानी, कई कोट अभिघातम निगोर, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट पर देश भर महाए, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट राजे रस होगी, कई कोट पास प्रखित जाए, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट देवतान दृश्य छत्र, नानक जिस पावे तिस तारे, कई कोट वेद प्राण स्मृत शास्त्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट गिरी मेरी स्वरण दिवे, कई कोट भूत प्रे सुगम में गाज, नानक आप रक्त रया भरपूर, कई कोट नरक स्वर्ग

0: दरबाल कबू बेगारी नीच का साजा
1: अब कीरत पह आवे
0: कबू बला बला गावे
1: जो प्रभु राखे तिब ही रहे
0: गुर प्रसाद नानक जस कहे
1: कबू होए पंडित करे बख्यान
0: कबू मोहनदारी लावे ध्यान
1: कबू तट तीरथ स्नान
0: कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कीट हस्त पतंग होए जी
0: अनेक जोन

अलग स्वर्ग फिर फिर अवतार हर दर के को कैसे गवे जिसे भलाई निकट ना आवे कौन नानक ताकि निर्मल सोए तब इसको

गुरप्रसाद किने वख्यानी कोट मदे किने पहले चीना असुंदरा पार अनूप कड़कड़ सुनी सरवण वख्यानी पवित्र।

0: ऐसा मैं सो निर्वाण किसकी घटिए जमकी वासा भारत किसे न लागे दुख
1: जिसको हर प्रभु मंच त्यावे
0: सो सांस से इला नहीं डुलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
0: सो सेवको किसते डरे
1: कैसा सत्य ऐसा दृष्टा
0: अपने काज में आप समाया
1: सोदत सोदत सोदत सिज्या
0: गुरु प्रसाद तब सब बुझा
1: तब देखो तब सब कुछ मोल
0: नानक सो सुखम सो यसूल
1: ना किश जन्म है ना किश मरे
0: आपन जलता आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आपे आप सगल में
0: अनेक जीवित स्थापो दाव
1: अविनाशी नाहि किस खंड
0: तारण तारे ब्रह्मांड

सोजन सदा रोग त्यों गुरका सबद मने समन प्राणी गुरु चरण लगत निस्त्रे गुरदर्शन देख मन होए विकास त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे नानक की आलोचा पूर पूर्व लिखेगा।

0: जो कर पाया सो ही होग,
1: इसका मत न जाने होर।
0: सर दुख सुनिए करता कह, तब मैं तब सिर श्रेष्ठ में भोगी। नानक किस पुरखा के अंत न पाया, सगल देव हारे अब गाए। सगल परोही अपने सूत, जनदास नाम ते आवे से, जन्म मरे फिर आवे जाए।

0: अपने की मजा पे पाई
1: सब कट
0: जब जब जीवे नान करना नाम के दारे खंड ब्रह्मांड नाम के दारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के दारे सकल आकार
0: नाम के संग उदरे सर्वण नान चौथे पद में सोजन गत पाए पुरख सद के प्रदान
1: सब पुरख सब माए समानी
0: मूल सत सत उत्पाद
1: जिसे बुझाए तिसे सब भले विश्वास नानक होते पाई सत जागे हृदय प्रवेश नाम जपता की गत होए आपे जाने अपनी मीत गत
0: अब न पूछ गत विचार
1: नानक
0: जो पावे सो वर्तिया जी पूजा दिखाया स्वाद गुर के वचन बता।

0: अपने दास को देव बढ़ाए,
1: अपने सेवक को नाम जपाए,
0: अपने सेवक की आपत राखे,
1: सबके
0: सेवक को न पहुँचे,
1: सेवक ऊँचे ऊँचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
1: सेवक दे दिस प्रगटाया,
0: नेकी कीरी मैं कल राखे।

0: सेवक और सदा दयाल गुर बचनिया नाम उचरे गुर का सिख विकार दे हाट है गुर का सिख पट पागिये नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है गुर की आज्ञा मन है सह हर नाम हृदय सत्यावे तिसे के कारज रास तिसको मोद प्राप्त स्वामी नानक सो सेव गुर की मतले सो सेवक परमेश्वर की अज जाने अनेक बार गुर को बल जाओ आठ पैर पार ब्रह्म रहता एक आप नहीं कुछ परम नानक ऐसा गुरु भागी पाई है परसा जगत निर्मल रहित पार ब्रह्म की दरगह गवे मन संतो का आत्म ध्यान है अमर जिस पे के वो संत नान जिस पावे जिस लय मिलाए
1: जेवा एको सत अनेक
0: सत वर्ग पूर्ण विवेक
1: बाहु बोल न पहुंचत प्राण
0: अगम गोचर प्रभु निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: लागी की मन किने न पाई
1: अलग भगत बंधन नित करे
0: जान कमल हृदय सिमरे
1: सत बलिहारी सतगुर अपने
0: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने
1: हे हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमृत सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: के मन पर बिटे गुण दास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेश सेवक को दे
1: मोह माया के संग न ले
0: मन में राखे हर हरेक
1: अंधकार थी पग पर गासे
0: नानक परमो दुख तय जन न से
1: तपत माहे ठाठ वर्ताई
0: आनंद ब्याह दुख नाठे पाई
1: जन्म मरण के मिटे अंधे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: पहुंचू का निर्भव होय बसे
0: सगल ब्याह मानते कह न से
1: जिसका साथ इन कित पाता
0: सा संग जब नाम मुरारी
1: कित पाई चुके परम गवन
0: सो नानक हर अज सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी ओही
0: कला दर्जन सगली मोही
1: अपने चरण प्रभ आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: हर पिन दूजा नाही कोई
0: सर्व निरंतर एको
1: ओत पोत रव्या रूप रंग रचना

0: चरण कमरित में उतारो, दृढ़ कर गौ नाम अर्पत, संत जना का निर्मल मत, सर्व रोग नानक मिट जाए, सोता नार सेवा ते पावे, सो सुख साधु संग प्रीत,
1: सासो पापन हर की सनी,
0: रोग मिटे।

गुरुदेव हरा सिमर प्राण आधार सिमर सात वेद विचारे मन वंचित नान बल पाए तू क्या लपटावे मूर्ख मना इंदे गौतम कम सनाता इंदे गौ कम छुटकार झूठा डाम छुपा सारी नाम सा नानक प्रसाना भगत बिना वो डूबे सियाने निर्मलो तुम्हारो चीत जन्म जन के गिर जाए सुन कह तरह गद पावो सह सुपाय नानक गाओ बिस जाए हो मैं भी फैल सास रासर नाम सुहाल सास संपावे सतना इहां सुखदर के जयकार कौन नानक जाके मस्तक लेख एक सिमर एक को मन आहे मंत्र जाप एक भगवंत पूरन पूरे हो प्रभ्याप

0: पाप उन तब कहते होता है।
1: जब तारी अपन सुन समात
0: तब वैर विरोध की संग मात
1: जब इसका वरन चेहना जापत
0: तब हरक शोको की से व्यापत
2: तब मोह का की सोबत परम
1: अपन खेल आप वर दीजा
2: नानक करने हार न
0: दूजा
1: जब होवत प्रभु केवल तनी
0: तब अन मुक्त को की सोगनी
1: जब एक है हर अगम अपार
0: तब नरक सुर को कौन उतार
1: जब निर्गुण प्रभु सहज सुपाए
0: तब सब संगत को की उठाए
1: जब आप पे आप अपनी ज्योत तरह
0: तब कवन निडर कम कर रहे
2: अपन छुटा करने हार
0: तै जन मन को का विनाशन
2: तब जब की त्रास को किस होए
1: जब अवगत गोचर प्रभु का
0: तब चित्र कुबत किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर
0: अगाध तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे नानक आपन पाप ऊपर जा तै बिन मैल कह गया तोता तै कौन मान कौन अभिमान तै शल शेत लगत को कीस तै किसे भूख कवन तपतावे नान करते का नाय समार तब कवन वाय वा मित्र सुत पाई तै वेक देव कहा को चीन तो सगर अपसगन कहा विचारे तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा नानक अपनी गत जानो आप मुआ की से व्यापत माया तै गुण का नाही प्रवेश
2: तै कौन अचित किस लागे चिंता
1: अपन आप
2: तै कौन कदे कौन

भगत करे हर के गुण गाए करण हर नानक के जानिया तिसकी आस न बैठी जाए हुकम।

0: दी
1: संत संग अंतर प्रभु डीठा
0: हाँ प्रभु का लागा मीठा ना प्रभु का लागा मीठा अनेक रंग नाना दिष्टाए देही में ऐसा विश्राम कहना चाहिए चतुर्विस्माद

जैसी आज्ञा तैसा कर्म। चार गुण दे जैसे समाए गुरप्रसाद नानक सुख पाओ। ससिया सूर खतर में एक

0: सर्वधर्म सर्वव्यापी राम संग रचन सत भजन साधु सब कहत
1: करण करावन हार प्रभ जाने
0: नानक दर्शन देख सब मोही।

0: अपन संग राज दूसरो दसो जी पाए गुरबसा नानक यो जान आ मिलाए ले प्रभु सोए
1: जीवन मुगत जी सिद्ध भगवान
0: जिस प्रसाद सब जगत तराया

सा संपत परमानंद गुण गोविंद अमृत रस पियो एक रूप जाके रंग अनेक दुख भंजन पूर्ण।

दे गुणा सत भैन प्राव है पारंगा धन पलीद लैने तरियन शतर सिर कर सिवती।

जो भारत निकालियन करावा कौन चिलकियोन लेने तरियन शत्र सिर समान क्याड़ा शिकियोन

0: आदि पुरख फरमायो।
1: वाहिगुरु जी गुण गावे रविदास भगत जदेव तलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माणे जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नवतन जग छायो कब कल सुजस नानक गुर नित नवतन जग छायो।
0: गुण गावे पायाल भगत नागाद पयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारी ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुकम सब शिष्ट सिवारिये ब्रह्मंड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानेओ जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानेओ ब्रह्मंड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानेओ जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानेओ।
2: गुण गावे नवनाथ तन गुर साच समायो माधाता गुण रवे जेन चकरवे कहायो गुण गावे बलराव सपत पा

0: नमो सूरज सूरज नमो चंद्र चंद्रे
1: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
0: नमो अंधकार नमो तेज तेजे
1: नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे
0: नमो राज संताम।

नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे निरकामन विभूते समस्तुल स्वरूपे सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणा

0: गूंज गुण का जान के सुंदर हिंसक ही है राज हजारे।
1: भगवान के पुपत कौन गिरनी चार बिचारे।
0: श्रीपद श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के।

0: छपेंगे,
1: सास मुंह पर सन फिरा जग सतर सब लोग छपेंगे,
0: मानव इंद्र का चंद्र रात जोन तो लोग का राज करेंगे,
2: नेक
0: है सब सच पर।

0: सो पावे।
1: सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे।
0: नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे।
1: कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं करते रे।
0: साचा नाम मेरा आधार।
1: साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया।
0: कर सान सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया।
1: सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया।
0: कहे नानक सुनो संतो सबद करो प्यारो साचा नाम मेरा आधार।
1: वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया।
0: पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारे।
1: तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे।
0: कहे नानक ते सुख होवा तित कर आनंद वाजे।
1: साची लिवै बिन देह नमाणी देह नमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया।
0: दुर्बार समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया।
1: ए सुनो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया।
0: कहे नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया।
1: आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया।
0: जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया।
1: कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया।
0: अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका सब सचे सवारिया।
1: कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया।
0: बाबा जिस तू दे सोई जन पावे।
1: पावे ता सो जन दे जिसनू होर क्या करे बेचारिया।
0: इक परम भूले फिरे दे दिसिक नाम लाग सवारिया।
1: गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावे।
0: कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे।
1: पावो संत प्यारे हो कत की करे कहानी।
0: करे कहानी कत गेरी कित द्वारे पाई है।
1: तन मन तन सब सौंपो गुर को।

0: के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है।
1: मनो क्यों विसारी है ये वरदाता जे अगन में आहार पहुंचावे।
0: उसनु कह पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे।
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है।
0: नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारी है।
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
0: अगन सब इको जेही करते खेल रचाया।
1: जात पाना ता जन्मया परवार भला पाया।
0: छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया।
1: ए माया जिथर विसरे मोपजे पौ दूजा लाया।
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया।
1: हरे आप मुल गै मुल ना पाया जाए।
0: पाया जाए किसे विटो रहे लोक बिलाए।
1: ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर सोपिए विचो आप जाए।
0: जियो तिस मल जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।
1: हरे आप मुलक है पाक तिना के नानका जिन हर पल पाए।
2: रास मेरी मन बन जा रहा हर रास मेरी मन बन जा रहा सतगुर ते रास जाने।

0: करे संतो बाग नी मन गारे
1: सब समय सबको प्रतिपारे
0: ओखत है जल में थल में पल में कल के नहीं करम बिचारे
1: दयाल दयाल दोखन देखत है पर देत न हारे
0: राहत है दुख दोखन को दल दूजन के पल में दल डारे
1: खंड खंड प्रचंड पहारे पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे
0: आ न पाए सके पद्मा पद भेद कते अपेद उचारे
1: रोज ही राज बिलोकत राज क्रोध रोहान की रोजी न डारे
0: कीट पतंग कुरंग पुचंगम पूत पविक पवान बनाए
2: देव देव कपे हमें न पेव लगे प्रम से ऊपर माए
0: वेद पुराण कते पुराण हसे तके कर हाथ न आए
2: पूर्ण प्रेम पर भाव बिना पद से ओके श्री पद्मा पद पाए
0: आद अनंत अकार अद्वैत सुकूत पविक पवान अभय है
1: अंत विहीन अनाथम आप अदाग अदो अशिद्र अशय है
0: लोगन के करता हरता जल में थल में पड़ता प्रवे है
1: दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद्मा पद ए है
0: काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न पे है
1: देव हीन सने सबो तन देव बिरकत अगे अच्छे है
0: जान को देत अजान को देत जमी

0: जंग सो दानव देव अपेर तुम्हें सब ही करते आवे
1: होम आकाश पताल सावल जच पचंग सवे से ले आवे
0: आए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेते वेद बतावे
1: खोज सके सब ही खुजिया सुहार परे हर हाथ नावे
0: आरत से चतुरानन से रुमनारिक से सब हु मिल गायो
1: वेद कतेव ना भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ नायो
0: आए सके नहीं पार उपमापत सिद्ध सनातन अंतंत आयो
1: ध्यान तरो तह को मन में जय को मितो सबे जक्षायो
0: वेद पुराण कतेव पुराण अपेद निपान सबे पचहारे
1: पेद न पाए सक्यो अनपेद को खेदत है अनशेद पुकारे
0: आग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग त्यारे
1: आद अनाद अगाद अभय अभय जपयो तिन्हि कुल तारे।

मिल साधु सुख उपजे लत्थी सब शाही पंजे बद्धे महाबली का सच्चा टोआ।

0: मांगत हो तुम ते के चाहत हो चित में सोई की जय।
1: सोवत हीरन भीतर जूझ मरो तो साच पति जय।
0: संत सहाय सदा।

0: सो जब जाए लरो निश्चय करे अपनी जीत करो।
1: अपने ही मन को ए लालच हो गुण तो उचरो।
2: जब आपकी ओत निदान बने तहिरन में तब जूझ मरो।

0: सर्व्यापत पूरन तनी जाकी शोभा कट कट बनी।
1: जिस सिमरत दुख तेरा टहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे।
0: जिस सिमरत दुख जिस सिमरत हो सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाह।

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
1: गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंद सहोदरा
0: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा
1: गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा
0: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन परम्परा
1: गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा
0: गुरुदेव आ जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जपुद्रा
1: गुरुदेव संगत प्रभु मेल कर कृपा
0: हम मूल पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर
1: गुरुदेव नानक हर नमस्कार।

चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण सहे सहन गणिज त्रिपवन महीपन

हाथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया, निर्मोल करतन पारा।

सतगुरु किने ना पायो, सतगुरु विच आप रखियो, सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सियों।

दर्शन परसिहै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सलोक महला पंजवां हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़ै खे जिन कीती तिसे ना जानई नानक फिट अलोणी दे हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़ै खे

आप दयाल होए पाओ खंडन, आप करे सब दान। जिस नौ गुरमुख आप बुला बुझाए, सो सद ही दर कै पाए मान। जिस दी पैज रखे हर स्वामी, सो सच्चा हर जान।

द्रौपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद संतन अवरना काहू जानी बेपरवा सदा रंग हर कै जा को पाक स्वामी राहो ऊच समाना ठाकर तेरो अवरना काहू तानी ऐसो अमर मिलो भगतन को राचरे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन नहीं निगटानी निरपो हुए रहे लेवे कै नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवां हर बिसरत सदा खुआरी ता को धोखा का ब्यापै जा को योट तुहारी राहो बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी नव खंडन को राज कुमावै अंत चलै गोहारी।

संत प्रसाद वैद नारायण करन कारण प्रभेक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टुडी माला पंजवां हर हर नाम सदा सद जाप तारियन ग्रह पार ब्रह्म स्वामी वादी किन्नी आप राओ जिस के से फिर तिनी समाले बिनसे सुख संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप जी जन तोय मेहरबान ना दया तारी अरनाथ नानक शरण परे दुख भंजन जां का बड प्रताप टोडी माला पंजवां स्वामी शरण परयो दरबारे कोट बराद खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारे रहो खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे सत संग परम गत पाईए माया रच बंद हारी

लपटे उरे मुड़े कछु ना थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी राव। आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनवा। नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए बाहू चितलायो। सो संचयो जित भूख ते सायो अमृत नाम तो सा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानक को तरिया टूडी माला पंजवां। हमारा एक हरी हरी आन अवर ध्यान ना करी रहो। वड्डा भाग गुर अपना पायो गुरमुखो हर नाम दिरड़ायो। हर हर जाप ताप बरत नेमा हर हर त्याय कुशल सब खेमा। आचार व्यवहार जात हर गुनिया महानंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकर पाया सब किस तिस कै ग्रह। मैं आया टोडी माला पंजवा कर चौथा दोप दे कौकार सतगुर प्रसाद। रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै गाली हरनी ना होए राहो। होंट नेंदी दर्शन कारण बीथी बीथी पेखा गुरमिल परम गवाया है।